ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी मुहक्किकीन क्वांटम कंप्यूटिंग के शोबे या ऐसे निज़ाम में पेशरफ्त कर रहे हैं जो पेचीदा मुश्किलात को हल करने में आम कंप्यूटर्स के मुकाबले में ज्यादा तेज हैं। मुल्क का पहला मॉडल जिसको न्यूट्रल एटम कहा जाता है, अब वस्ती जापान के आईची प्रिफेक्चर में काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर्स मुश्किलात को हल करने के मुतअद्दिद इम्कानात तलाश करने के लिए एटम और इलेक्ट्रॉन जैसे जर्रात के मुनफरिद रवैये इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल एटम क्वांटम कंप्यूटर एक किस्म है जो मुमकिन तजारती इस्तेमाल के लिए जेर गौर है। ये जापान मॉडल इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर साइंस समेत एक ग्रुप ने तैयार किया है। मुहक्किकीन का कहना है कि ये ऐसे एटमों को मुंसलिक करने के लिए वैक्यूम चैम्बर के अंदर लेजर का इस्तेमाल करता है जो बरकी तौर पर चार्ज नहीं होते हैं। इत्तला के मुताबिक ये मॉडल क्वांटम कंप्यूटर्स की दीगर अकसाम के बरक्स कमरे के दर्जा हरारत पर काम कर सकता है। इसका मतलब है कि इसे कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है और इसे ज्यादा अमली इस्तेमाल के लिए छोटे साइज में रखा जा सकता है। इसे तैयार करने वालों का कहना है कि उनका सिस्टम फिलहाल बुनियादी हिसाब किताब कर सकता है। अगले इकदाम में बड़े पैमाने पर हिसाब शुमार को फाल करने के लिए इस्तेकाम

0: तस्वीर खींची, यहां तक कि वो एक फोटोग्राफर के तौर पर अमरीकी फौजियों के साथ जुड़ गए। इशिकावा को जापान के मारूफ जंगी फोटोग्राफर्स में से एक के तौर पर जाना जाता है। वो 1969 से ओकिनावा में भी सरगर्म थे। इशिकावा ने फादेना हवाई अड्डे से वियतनाम के लिए रवाना होते B-52 बम्बार तैयारों और उन फौजियों की तस्वीर खींची जिन्हें वियतनाम भेजा जा रहा था। चीन में होने वाले एक मुकाबले में एक इंसान नुमा रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी आलमी इंसान नुमा रोबोट गेम्स हफ्ते के रोज बीजिंग में शुरू हुई। चीनी दारकूमत की बल्दियाती हुकूमत और दीगर इदारे इस 5 रोजा मुकाबले की मेजबानी कर रहे हैं। इसमें जापान जैसे 16 ममालिक की कंपनियों समेत 666 टीमों के 2000 से ज्यादा इंसान नुमा रोबोट हिस्सा ले रहे हैं। हिस्सा लेने वाले रोबोट्स की तादाद में पिछले साल से 4 गुना इजाफा हुआ। वो 51 इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं जिनमें ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल और खाने पीने की चीजें पेश करने जैसे अमली काम शामिल हैं। 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई राउंड में एक रोबोट ने 9.32 सेकंड में दौड़ मुकम्मल की। उसने पिछले साल के 21.50 सेकंड के जीतने के वक्त को पीछे छोड़ दिया और यहां तक कि यूसेन बोल्ट के कायम करदा 9.58 सेकंड का इंसानी आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। चीनी हुकूमत रोबोट की सनत को तरक्की के एक नए शोबे के तौर पर देखती है। चुनाचा बहुत सी कंपनियां उनकी तैयारी की दौड़ में शामिल हो गई हैं, जिसकी वजह से इस शोबे में तकनीकी जिद्दत आई है।
1: इसके साथ ही खबरें खत्म हुईं।

0: मुकदमा एक बार फिर सुनते हैं।
1: ओ बेंटो दा यो, बुकु गा त्सुकुत्तान दा, दोज़ो।
2: किरे, सुगोई, इतादाकिमास। この卵焼き、甘くて美味しいです。
3: カイトは本当に料理が上手だね。
1: 僕、シェフになりたいんだ。
3: いいね。
4: आज के सबक का कलीदी जुमला है, ये जापानी आमलेट मीठा और मजेदार है।
2: この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए एक से ज़ायद तासीरात का इजहार कर सकते हैं।
0: कोनो तमागोयाकी की मानी है ये जापानी आमलेट। तमागोयाकी या जापानी तरस का आमलेट खाने के डिब्बे, जिसे हम टिफिन भी कह सकते हैं, में तकरीबन लाजमी शामिल होता है। इसे बनाने के लिए अंडों में शक्कर शामिल करके फेंटा जाता है, फिर फ्राई पैन में उसकी पतली तह लगाते हुए रोल किया जाता है। हतमी तौर पर यह ब्लॉक की शक्ल का होता है। अगला लफ्ज़ अमाकते, दरअसल ई इसमें सिफत अमाई यानी मीठा से बना है, और ओइशी के मायने है मज़ेदार। आज का नुक्ता दो या जायद इसमें सिफत को जोड़कर अपने तासुर का इजहार करने से मुतल्लिक है। ई इसमें सिफत को जोड़ने के लिए उसके आखिरी ई को हटाकर कुते लगाना होगा। आज के मकालमे में अमाई और ओइशी मिलते हैं तो अमाई तब्दील होकर अमकते बनता है, और उसके बाद ओइशी लगकर अमाकते ओइशी बनता है।
4: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
5: अमाकते ओइशी देसु। कोनो तमागो याकी अमाकते ओइशी देसु।
4: जी सामीन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: अब एक पार्क से मुतालिक तासुरात का इजहार करने वाला एक मकालमा सुनिए।
6: 上野公園どうでしたか？
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
0: अब इस मकाल में की तशरीह।
6: 上野公園どうでしたか？
4: 上野パーク कैसा था？
0: 上野公園यानी上野パーク、ये टोक्यो में वाकई एक बड़े पार्क का नाम है, और どうでしたか यानी कैसा था, ये तासुर पूछने का एक अंदाज है।
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
4: वसी और खूबसूरत और बहुत अच्छा था।
0: हिरोकते, ई इसमें सिफत हिरोई यानी वसी की अगले इसमें सिफत से जुड़ने वाली शक्ल है। किरे दे, ना इसमें सिफत किरे ना यानी खूबसूरत की अगले इसमें सिफत से जुड़ने वाली शक्ल है। ना इसमें सिफत को अगले इसमें सिफत से जोड़ने के लिए आखिरी ना को दे में तब्दील किया जाता है। तोतेमो योकाता देस का मतलब है बहुत अच्छा था।
4: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
5: हिरोकुते हिरोकुते किरेदे हिरोकुते किरेदे तोतेमो योकात्ता देसु।
0: अब तासुर के इजहार के कुछ और अल्फाज के साथ मश्क। फर्ज करें कि कोई शख्स आपको बिल्ली की शक्ल की कोई सजावटी चीज तोहफे में देता है। आप कहना चाहते हैं छोटा और प्यारा है। छोटा की जापानी है
5: चीसाई,
0: और प्यारा को कहते हैं
5: कवाई कवाई,
0: और आखिर में मुखातिब से अपनी बात की तस्दीक के लिए ने लगाएं। सामीन कोशिश करें।
2: चीसकते कवाई देसु ने, चीसकते कवाई देसु ने।
0: अब फर्ज करें कि किसी ने जापान की ट्रेनों से मुतालिक आपका तासुर पूछा है। आप कहना चाहते हैं ये वक्त की पाबंद और बासहूलत है। वक्त की पाबंद यानी
5: सेकुना सेकुना,
0: और बासहूलत
5: बेंडीना बेंडीना।
0: तो आप किस तरह कहेंगे?
6: सेकुदे बेंडी देसु ने, सेकुदे बेंडी देसु ने।
4: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज के लफ्ज मकालमे में कायतो ने खाने का डब्बा निकालने के बाद इस्तेमाल किया है
1: दोज़ो।
0: दोज़ो आज के मकालमे की तरह खाना या कोई और चीज़ पेश करते वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा यह किसी काम की इजाज़त देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
4: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुनिए।
8: दोज़ो どうぞ。
4: سامعین اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے.
8: دوزو.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنے تاثرات کا اظہار کرتی ہے.
1: او بینتو دایو بوکو گا تسکتتان دا دوزو.
9: کیرے سگوئی ایتاداکیماس کونو تاماگو یاکی اماکتے اویشی دس.
3: کائتو ہا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے.
1: بوکو シェフになりたいんだ。
3: いいね。
10: ハルさんの知恵袋。
4: अब हारू सान की संबील का कॉर्नर. आज का मौजू है ओहानामी, यानी चेरी के फूलों का नजारा.
0: हिरा, आप जापान आकर ओहानामी से तो यकीनन लुत्फ़अंदोज हुई होंगी.
4: जी यकीनन. मौसम बहार में खूबसूरत गुलाबी फूलों से लदे चेरी के दरख्तों के साथ चहलकदमी करना اور ان کے نیچے بیٹھ کر کھانا پینا بہت پر لطف ہوتا ہے.
0: چیری کے پھول مارچ سے مئی تک جنوبی علاقوں سے شمالی علاقوں کی جانب کھلتے جاتے ہیں. ملک بھر کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے پھول کھلنے کے متوقع وقت سے متعلق محکمہ موسمیات کی پیشگوئی اور کھلنے کے موجودہ مرحلے کے اعلانات کے منتظر رہتے ہیں تاکہ اسی لحاظ سے اپنی اپنی پکنک کی منصوبہ بندی کر سکیں.
4: تو زیادہ تر لوگ اوہانامی کے لیے کہاں جاتے ہیں؟
0: کئی لوگ اپنے اپنے علاقے کے باغات یا سڑکوں کے کناروں پر لگے چیری کے درختوں پر پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ اوہانامی کے لیے مشہور مقامات کا رخ کرتے ہیں. ٹوکیو میں اوینو پارک اور شنجوکو گیوین نیشنل پارک مقبول مقامات ہیں. ان کے علاوہ دریائے سمیدا اور دریائے میگورو کے کنارے لگے چیری کے درخت بھی اوہانامی کے لیے مقبول ہیں. رات کے وقت برقی کمکموں سے آراستہ چیری کے درخت بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں.

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 24 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे वायला खवानो और गुरजिंदर सगू से सुने समाचार। पूर्वी और पश्चिमी जापान के व्यापक क्षेत्रों में सोमवार को तापमान तेजी से बढ़ा और किंकी क्षेत्र के कुछ इलाकों में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। लोगों को तापघात से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में उच्च दाब तंत्र के बने रहने के कारण पारा ऊपर चढ़ गया। कुमामोतो प्रीफेक्चर में पिछले महीने के भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। उकी शहर में तापमान 37.7 डिग्री और कुमामोतो शहर में 37.3 डिग्री तक पहुंच गया। शिगा प्रीफेक्चर के ओत्सु शहर में तापमान 39.5 डिग्री और क्योतो शहर में 39.1 डिग्री रहा। अधिकारियों का कहना है कि मध्यवर्ती टोक्यो में दिन का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री दर्ज किया गया। कांतो क्षेत्र से लेकर ओकिनावा तक 31 प्रीफेक्चरों में तापघात चेतावनी जारी की गई है। लोगों को एयर कंडीशनर का उपयोग करने, लगातार पानी पीने व नमक का सेवन करने तथा

बाहर खुले में गतिविधियों से परहेज करने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि नम हवा और उच्च तापमान के कारण उत्तर से पश्चिमी जापान तक के विस्तृत क्षेत्र में वायुमंडलीय परिस्थितियां अस्थिर हो जाएंगी। कुछ क्षेत्रों में गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। सोमवार रात से मंगलवार तक तोहोकू के ऊपर से एक वर्षा अग्र के गुजरने से मुख्य रूप से जापान सागर की ओर भारी बारिश की आशंका है। अधिकारियों ने भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के साथ साथ वज्रपात और बवंडरों सहित तेज हवाओं के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के बंदी शिविरों में मारे गए जापानियों के लिए एक स्मृति सभा में भाग लेने वाले लोगों ने जापान सरकार से आग्रह किया है कि सामूहिक नजरबंदी की पूरी जानकारी प्रदान की जाए। 81 वर्ष पहले 23 अगस्त को तत्कालीन सोवियत संघ ने चीन और अन्य जगहों पर तैनात जापानी सैनिकों और नागरिकों को साइबेरिया तथा अन्य स्थानों पर मौजूद श्रम शिविरों में भेजने के आदेश दिए थे। रविवार को टोक्यो के चिदोरी गाफुची राष्ट्रीय समाधि स्थल में आयोजित एक स्मृति सभा में लगभग 200 लोगों ने मृतकों के लिए मौन प्रार्थना की। इस सभा का आयोजन पूर्व बंदियों और शोक संतप्त परिवारों के एक संगठन ने किया था। जापान के कल्याण मंत्रालय का अनुमान है कि श्रम शिविरों में लगभग 55,000 बंदियों की मौत हुई, लेकिन उनकी सटीक संख्या और उन्होंने जो कठिनाइयां झेली उनके बारे में ठीक से पता नहीं चल पाया है। 20,264 बंदियों की अस्थियां मिल गई हैं, लेकिन उक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण रूस में अस्थियां एकत्र करने का काम रुक गया है। पूर्व बंदी निशिकुरा मासारू के अनुसार जापानी समाज ने साइबेरिया बंदी शिविरों पर अब तक गहराई से विचार नहीं किया है। उन्होंने तथ्यों की पूर्ण जांच पड़ताल करने का आह्वान किया ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो।

ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापानी शोधकर्ता क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। ये ऐसी प्रणाली है जो सामान्य कंप्यूटरों की तुलना में जटिल समस्याओं को बहुत तेजी से हल कर सकती है। देश के इस पहले मॉडल में तथाकथित न्यूट्रल एटम्स का इस्तेमाल किया गया है। ये मॉडल इस समय मध्यवर्ती जापान के आईची प्रीफेक्चर में काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटर अणुओं और इलेक्ट्रॉन जैसे कणों के अनूठे व्यवहार का उपयोग करके समस्याओं को हल करने की अनेक संभावनाओं का पता लगाते हैं। न्यूट्रल एटम क्वांटम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिनके संभावित व्यावसायिक उपयोग पर विचार किया जा रहा है। इस जापानी मॉडल को आणविक विज्ञान संस्थान सहित एक समूह ने विकसित किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये लेजर की मदद से निर्वात कक्ष के अंदर उन अणुओं को कैद करता है जो विद्युत आवेशित नहीं होते हैं। माना जाता है कि अन्य क्वांटम कंप्यूटरों के विपरीत ये मॉडल कमरे के तापमान पर काम कर सकता है, यानी इसके लिए प्रशीतन प्रणाली की आवश्यकता नहीं है और इसे व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए छोटे आकार में रखा जा सकता है। विकासकर्ताओं का कहना है कि उनका ये मॉडल फिलहाल बुनियादी गणनाएं कर सकता है। अगला कदम इसके संचालन को पर्याप्त रूप से स्थिर बनाना होगा ताकि विशाल गणनाएं की जा सकें। वियतनाम युद्ध की तस्वीरों के लिए मशहूर जापानी फोटो पत्रकार इशिकावा बुनियो का रविवार को नागानो प्रीफेक्चर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। 1965 से 1968 के बीच इशिकावा ने दक्षिणी वियतनाम के साइगोन यानी मौजूदा होचीमिन शहर में एक स्वतंत्र फोटो पत्रकार के रूप में काम किया। बाद में वे उत्तरी वियतनाम भी गए। इशिकावा ने वियतनाम युद्ध की हकीकत बयां करने वाली 15,000 से अधिक तस्वीरें लीं। वे एक फोटोग्राफर के रूप में अमरीकी सैनिकों के साथ भी रहे। इशिकावा जापान के एक अग्रणी युद्ध फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे 1969 से ओकिनावा में भी सक्रिय रहे। इशिकावा ने खादेना वायुसैनिक अड्डे से वियतनाम के लिए रवाना होने वाले बी

0: बमवर्षक विमानों और सैनिकों की तस्वीरें खींची थीं। चीन में आयोजित एक प्रतियोगिता में एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100 मीटर दौड़ का इंसान का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का शुभारंभ शनिवार को पेइचिंग में हुआ। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता की मेजबानी पेइचिंग नगर पालिका सरकार और अन्य संस्थाएं कर रही हैं। जापान जैसे 16 देशों की कंपनियों सहित 666 दलों द्वारा विकसित 2000 से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट इसमें भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में इन रोबोटों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना बढ़ गई है। वे ट्रैक एंड फील्ड, फुटबॉल और खाना पीना परोसने जैसे व्यावहारिक कार्यों सहित 51 स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। एक रोबोट ने पहले राउंड की 100 मीटर दौड़ पूरी करने में 9.32 सेकंड का समय लिया। ये पिछले साल के रिकॉर्ड 21.50 सेकंड से कहीं कम है। इसने उसेन बोल्ट का 9.58 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। चीन सरकार रोबोट उद्योग को विकास के एक नए क्षेत्र के रूप में देखती है, जिसके चलते कई कंपनियां रोबोट विकास की होड़ में शामिल होकर तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे रही हैं। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।